आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

किधर है?

माचिस की कांडी लो।

0: जा। आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है, क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
1: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
0: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
1: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया।
0: आई गो आई गो।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 9 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सब्सक्राइब करो सुपर हिट गुजराती गीत चैनल ने पछी यूट्यूब एप पर बेल नु बटन क्लिक करो अने सुपर हिट गुजराती गीत तरफ थी लेटेस्ट 4K सॉन्ग्स मेळवो।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 11 AM इन इंडिया। Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 नून इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

Mm-hmm.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
1: जाता हूं, जाता हूं, जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
0: नहीं।
1: थोड़ा भी नहीं?
0: नहीं।
1: झूठा भी नहीं?
0: नहीं, नहीं, नहीं।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

गोलियत, लैला मजनू शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है याद। याद मुझे आया है कैसे दिलबर का नाम, जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली, किसी ने जान

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ऑफ द वीक शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार अंतरा मस्ती में सुनिए दिए गए अंतरे पर आधारित गाने। लाइव शो में पार्टिसिपेट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से, जो है 91-35-84-1232 यानी 9135841232। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन, आ चुका हूं लेकर आज के स्टार ऑफ द वीक का ये प्यारा सा प्रोग्राम। और आज के हमारे स्टार है ऋषि कपूर जी। जी बिल्कुल सही सुना आपने, ऋषि कपूर जी के साथ हम आए हुए हैं आज का प्रोग्राम लेकर। और आज का प्रोग्राम बेहद खास है और आज का दिन भी बहुत खास है, क्योंकि आज है यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन भी ये मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है, तो और वो दिन को मेरे लिए बहुत खास बनाया है हमारी सुंदरता की मुरत जी, तो उनके लिए स्पेशली गाना मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। इंजॉय कीजिए।

ऐ सनम ऐ सनम ऐ सनम, हम तो सिर्फ सिर्फ सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, सच में बहुत प्यार करते हैं और बहुत इंतजार भी करते हैं, तो जल्दी से आ जाओ। और फिलहाल मेरे पास बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और सबसे पहले आज जुड़ने वाले हैं कौन से साहब, हमारे मिसाल अंगा जी जुड़ चुके हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं मिसाल अंगा जी। और मिसाल अंगा जी के साथ साथ जुड़े हुए हैं हमारे जी विष्णु चंद्र जी, आपका भी वेलकम करते हैं विष्णु चंद्र जी। और उनके बाद है बाबूलाल अंजाना जी, ओके। और इन प्रियंका जी, बहुत बहुत वेलकम है प्रियंका जी। सर्वेश भगत जी वेलकम करते हैं। मोहन नेवारे जी, आपका भी वेलकम है। और मुबारक हुसैन जी भाई, मुबारक हो, आप जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। आत्माराम पाटिल जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आत्माराम पाटिल जी। और हुकुम चंद जांगिर जी भी हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। साथ ही साथ जुड़ने वाले हमारे सुनीता गोप जी हैं, वेलकम है। काजल झक्का जी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। सर्वजीत सेठी जी हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि राजेश कुमार जी हैं, ग्रेटर नोएडा हबीबपुर वाले शायद। और यानी कि किशन पाल शाक्य जी भी हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और अशोक देशमुख जी हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और निशांत राय बोले जी, आपका भी वेलकम है। और आरिफ सिंधी जी, आपका भी वेलकम करते हैं। और गजानंद सलोकार जी और इनके ग्रुप के एक और दोस्त यानी कि नीलेश विरोकार जी, दोनों जुड़ चुके हैं, दोनों का वेलकम करते हैं। और जितने भी दोस्त चोरी चोरी चुपके चुपके सुनते हैं, उनका भी वेलकम है, वेलकम है, वेलकम है। और जैसा कि आज सभी को पता है ना कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, इस गाने को सबसे पहले लेके आई हुई है सुनीता गोप जी, तो सुनवाते हैं। इसी गाने से हम आगाज करते हैं आज के प्रोग्राम का, क्योंकि सच में मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं, सच में देर हो जाती है। इंजॉय कीजिए

0: बिल्कुल मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। वैसे फीडबैक बहुत सारे आ चुके हैं। निशांत राय बोल लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिल रहा है पहले ही। और गजानंद लिखते हैं कि सुनीता गोप जी के पसंद हीना फिल्म का बहुत बेहतरीन लाजवाब लगा है, धन्यवाद देते हैं उनको। और राहुल पासी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। काजल है, काजल लिखते हैं कि गाना तो बहुत ही प्यारा लगल है। और इनके पास ये बागेश्वर निषाद जी लिखते हैं कि जन्माष्टमी को ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और अगला जो डिमांड है हमारे सर्वजीत सेठी जी का, लेकिन उनका एक मैसेज भी आया हुआ, जरा इसको भी मैं शामिल करता हूँ। क्या कहते हैं भाई?
1: अमन सर जी, जी नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: मैं सर्वजीत सेठी फाजिलका पंजाब से
0: जी।
1: कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छा, बोलिए।
1: हम भी अपने स्थान पर ठीक हैं, हम भी आपके कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं।
2: पर्वत के उस पार गूंज उठी चम चम चम तेरी पायल की झंका।
1: तो सुनते रहिए हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे।
0: ओके धन्यवाद देते हैं। अगला गाना आपका मैं सुना रहा हूँ, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल, मैं पंख लगा के आया और सभी दोस्तों का मैसेज भी लाया साथ में। ओके, और मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे सुनीता गोपी जी के बहुत बहुत धन्यवाद। अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। दोस्तों का भी धन्यवाद देते हैं फीडबैक देने के लिए। और मोहम्मद शकील साहब जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और जुड़ने वाले हैं, ये क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: गुड इवनिंग अमन जी, ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा था। ख्वाब आँखों

0: धन्यवाद देते हैं आपको, लेकिन थोड़ा सा छोटा गाया कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। और गजानंद जी लिखते हैं कि सरवजीत सेठ जी की पसंद बेहतरीन लगी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और वैसे आप गाना अच्छा गाती हैं, मैं ये नहीं करूँ कि आप गाना अच्छा नहीं गाती हैं। मंगेश दसमुख जी लिखते हैं कि आज मुझे राधे राधे हम भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं भाई आपका भी। और काजल झक्का जी लिखते हैं गाना ही बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये गाना भी। और रवि मोहन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और ये फिर
1: आरजे अमन सर जी, सुसंध्या नमस्कार, नमस्ते जी, सुनीता गोप जी और सरबजीत सेट्ठी जी अपने गाने में शामिल किए, दोनों आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और फीडबैक देने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे दीपक कुमार गायकवाड जी क्या कहते हैं।
2: अमन जी नमस्कार, नमस्कार आप सभी सुनने वालों को, यमुना किनारे वालों को और गंगा किनारे वाले को, सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दीपक गायकवाड़ सीनी मालवा मध्य प्रदेश से।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और निशांत है बोल लिख देंगे बहुत ही प्यारा गाना है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि बिन साजन झूला झूलू, ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद आया है। और बाबूलाल अंजना लिखते हैं कि सरोजिनी सेठी जी की डिमांड बहुत ही प्यारी है, बहुत शानदार है। नंदलाल जी लिखते हैं कि गुड इवनिंग अमन सर जी, मैं भी जुड़ गया हूँ गाजीपुर यूपी से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और विष्णु चंद्र जी भी लिखते हैं कि यह कमाल का गाना है जी, मजा आ गया ना। और राजेश कुमार लिखते हैं कि सरबजीत सेठी जी की पसंद मुझे सुपर हिट लगी है। साथ ही साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं नईम खान जी, बहुत बहुत वेलकम है, लिखते हैं कि बहुत प्यारा गाना है अमन जी। एम ताहिर जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि आदाब अमन खान साहब, वालेकुम अस्सलाम सर जी, आपको और कार्यक्रम सुनने वाले हमें सभी यानी प्यारे प्यारे ये साथियों को भी अच्छा माना कि आपके आने में थोड़ी देर हो गई, यानी कि पर आपकी आमद से इस शो का हर कोना रोशन हो उठा है। आपकी पेशकश का आगाज सुनने के लिए दिल बेहद बेताब है, आपकी रूहानी आवाज़ और अल्फाज का जादू उस सुनने के लिए हम पूरी शिद्दत से मुंतजिर हैं जी। अगला गाना आप ही गाने वाला है, टेंशन मत लीजिए। तौकीर अंसारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और हुकुम चंद जांगड़ जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना था, थैंक यू सो मच। और मीना इब्राहिम जी जुड़ चुके हैं यूएसए, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अगला जो डिमांड है एम ताहिर जी का ही है, और सच में बचना है हसीनो मैं आ गया।

बिल्कुल बचना ऐ हसीनो लो में आ गया आ गया आ गया। और मिशाल अंगद जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा है, और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और गजानंद जी लिखते हैं कि हम बचना ऐ हसीनो बेहतरीन लाजवाब सुनकर मजा आ गया। अच्छा जी ओके। और बाबूलाल जी लिखते हैं एम ताहिर जी की डिमांड बेहतरीन लगी है। और काजल झका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है ओके जी। और रवि मोहन जी क्या कहते हैं,

0: अपनी अदा है यारो लोगों से जुदा है, है बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया।
1: सुपर लाजवाब सॉन्ग, मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए।
2: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद आपका भी। और हमारे बीरबल बघेल साहब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं सभी दोस्तों को, नमस्कार करते हुए जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और मोहम्मद शकील साहब लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जन्नत जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, लिखते हैं राधे राधे आप सभी को, और लिखते हैं कि तेरे इंतजार में आज भी वही शाम ठहरी है और दिल में तेरी यादों की एक दुनिया बसी है, और तू आएगा कभी इस उम्मीद में बैठे हैं, वरना ये आंखें तो वो कब की वो तुझे ढूंढते ढूंढते थक चुकी हैं। ओके धन्यवाद देते हैं आपका भी। और मीना जी से ये गाना मुझे बहुत पसंद आया, धन्यवाद देते हैं। और विष्णु चंद्र जी से
3: मुझे
2: खान सर जी, आपकी बुलंद आवाज और शानदार गायकी ने इस नगमे में जादू का दुगना कर दिया है, और खास पेशकश के लिए थैंक यू सो मच। ओके जी, और राहुल पासी जी लिखते हैं कि हम किसी से कम नहीं का गाना शानदार लगा है, बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए भी। और बीरबल बघेल जी लिखते हैं कि लो मैं आ गया, अच्छा जी बिल्कुल शानदार गाना है ना। ओके फिलहाल अगला जो गाना है यानी कि तेरे चेहरे से, एंजॉय कीजिए इस गाने को। और ये गाना लेकर आए हुए हैं कौन से दोस्त, मैं बता रहा हूँ, ये लेकर आए हुए हैं हमारे नामिन का सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी तो कोई बात नहीं।
4: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ऑफ द वीक शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार अंतरा मस्ती में सुनिए दिए गए अंतरे पर आधारित गाने। लाइव शो में पार्टिसिपेट कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से, जो है 91-35-84-12-32 यानी 9135841232। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
2: ओके, एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें भाई। आपने तो मुझे शायर बना दिया। जाकिर खान जी लिखते हैं कि आपकी आंखें ऊंची हुई तो ये दुआ बन गई। अच्छा लिखते हैं कि आपकी आंखें ऊंची हुई तो दुआ बन गई और नीची हुई तो हया बन गई, जो जोकर उठी तो यानी कि खता बन गई। अच्छा और अगर यानी कि उठकर जोकी तो अदा बन गई। अच्छा ऐसा कुछ है क्या?

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार। जो दीवाना बना देखो, गजानंद जी लिखते हैं कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें, बहुत ही बेहतरीन गाना सुनने को मिला, लाजवाब पसंद। और नईम खान जी लिखते हैं, सॉरी ये नसीम खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। लिखते हैं कि आपके परफॉर्मेंस का जवाब नहीं हो, माय गॉड थैंक यू सो मच। काजल जगह जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा है। और बागेश्वर निशा जी लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग, ओके जी। और बीरबल बघेल जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है। हाँ तो ये लिखते हैं कि अमन सर जी आज मैं पूरा जोड़ने का प्रयास करूंगा जी, बहुत अच्छी बात है। और आज अच्छा ओके तो ओके तो आपको भी बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ओके जी। लेकिन वो तो यानी अच्छा यानी कि 23 सितंबर, ओके कोई बात नहीं है, आपको एडवांस में भी। और निशांत राय बोले जी लिखेंगे बहुत ही बढ़िया गाना था, मजा आ गया इस गाने को सुनकर भी। और हमसे यानी कि मिशाल अंकल जी जुड़े हुए हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और ये फीडबैक
1: अमन भैया नमस्कार, मैं अनिल कश्यप सिवान बिहार से जुड़ गया हूँ। और आज स्पेशली जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना आपको देते हुए सारे लिसनर्स लोगों को भी हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और एक लाइन में कहना चाहूँगा कि पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य जो है वो कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो श्री कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है तो वो श्री कृष्ण है। और मृत्यु के फन पर मौजूद होने के बाद भी यदि नृत्य है तो वो कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि सारथी बने रहे तो वो श्री कृष्ण है। थैंक यू भैया, और आपको बहुत बहुत लव यू भैया।
0: लव यू टू भैया, ओके जी। और मीना इब्राहिम जी लिखते हैं ये कितनी प्यारी फरमाइश है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। एम ताहिर जी लिखते हैं कि दिल की गरिया को छूने वाला सॉन्ग है जी, बिल्कुल इसी बात पर। अगला जो डिमांड है वो कायना जी का है, क्योंकि मैं शायर तो नहीं, अब देखने के बाद तो शायर बनना पड़ेगा ना।
2: बेस्ट गिफ्ट फॉर

0: बिल्कुल मैं शायर तो नहीं, लेकिन आपको देखने के बाद तो शायरी ऑटोमेटिक आ गई ना। वैसे बीरबल बघेल लिखते कि क्या खूबसूरत गाना है जी, जब से देखा तुझको मुझको शायरी आ गई और आशिकी आ गई। काजल झकाजी लिखते गाना भी बहुत ही प्यारा है। और थैंक यू सो मच, नीतू शरण जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और गजल जी लिखते हैं कि मैं शायर तो नहीं, बॉबी फिल्म का लाजवाब बेहतरीन गाना। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये कायना जी की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है। और ईश्वरलाल मेहर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, लिखते हैं कि जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये फीडबैक
1: हमारे स्टार आज अमन जी, एक टाइम था अमीन सयानी का, जिनके प्रोग्राम सुनने के लिए और जिनके प्रोग्राम का इंतज़ार करने के लिए हम बिल्कुल इंतज़ार करते थे कि वो प्रोग्राम उनका कब शुरू होगा। और हम वो प्रोग्राम बहुत सुनते थे उनके। और उनके जाने के बाद कोई ऐसा प्रोग्राम आया नहीं, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कमी अब पूरी हो रही है। अमीन सयानी जी की जगह अब हमारे अमन जी आ चुके हैं, और आपके प्रोग्राम में भी हमें उससे ज़्यादा आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो हॉटस्टार का और आपका। मैं दीपक गायकवाड़, सिवनी मालवा, मध्य प्रदेश से।
0: थैंक यू सो मच। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने भी अमीन सयानी का डुप्लीकेट करने की कोशिश की है, और गीत माला का मैंने भी पेशकश किया है, वो आपको YouTube पर मिल जाएगा। अगर समय मिलेगा तो एक बार जरूर सुनिएगा। फिलहाल अगला जो डिमांड है मैं प्ले करता हूँ।
2: वैसे तो एक डिमांड थी, आज हमारे लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है, यानी कन्हैया कान्हा केशव जो भी कह लीजिए, उसके अलावा कोई और भी है उसका भी बर्थडे है, उनका मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगी। तो कोई बात नहीं, आपने नहीं अगर थीम के अकॉर्डिंग नहीं था, चूँकि और आप ठहरे बहुत बड़े वाले रूलर, क्या बोलूँ मैं आपको। तो बस एक गाना है छोटा सा, रिक्वेस्ट सॉन्ग है

अब वो है कौन आप, ये तो आप सभी जानते हैं, मतलब सभी लिसनर्स को भी पता है। तो उनके साथ में आपको और आपके अलावा हमारे लड्डू गोपाल को, यानी आप तीनों को डेडिकेट है ये सॉन्ग, और इसके अलावा सुनने वाले सभी को। थैंक यू सो मच।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बनाते, बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं। मीना इब्राहिम जी लिखते हैं, वाह क्या डिमांड थी, मजा आ गया है, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। और ये फीडबैक आरती तिवारी जी का सुनते हैं।
1: गाना चल रहा था, मैं शायर तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी वैसे शायर नहीं हूँ,
0: शायरा नहीं
1: है, शायरी कर लेती हूँ। चलिए मैं सुनाती हूँ अपने लिखे हुई छोटी सी शायरी, कोशिश करती हूँ आपको पसंद आए।
0: बिल्कुल।
1: हम उनके पास नहीं है तो क्या हुआ, हम उनके पास नहीं है तो क्या हुआ, वो हमारे पास आज भी है।
0: अच्छा।
1: हम उनके दिल में नहीं है तो क्या हुआ,
0: क्या हुआ?
1: वो हमारे दिल में आज भी है।
0: सदियां
1: गुजर जाए या युग बदल जाए, सदियां गुजर जाए
0: या
1: युग बदल जाए, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है जाना, चाहे ये मौसम हो चाहे वो मौसम, वो हर मौसम में हमारे पास आज भी है। इसे अमन सर जी धन्यवाद देते हैं आपको,
0: आज
1: उनका सभी गाने बहुत ही मजेदार हैं। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों।
0: ओके जी, बहुत बहुत अच्छा आपने ये शायरी कहा है, बहुत अच्छा लगा है। ये आपकी लिखी हुई है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं, गाना तो बहुत ही प्यारा है। और मंगेश दशमुख जी लिखते हैं, दर्द दिल दर्द जिगर वाला गाना मुझे सुपर हिट लाजवाब लगा है। और बीरबल बाघेल लिखते हैं, वाह क्या बात है, आदरणीय आरजे आकांक्षा जी आपका गाना सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा आपने गुनगुनाया भी। और एम ताहिर साहब लिखते हैं कि आकांक्षा जी ने दर्द दिल दर्द जिगर जैसे क्लासिकल नगमे को चुनकर अपनी नफासत और संगीत की गहरी समझ का परिचय दिया है। इस सदाबहार गीत के प्रति उनका लगाव यह दर्शाता है कि वे न केवल इन सुरों की मिठास बल्कि उनमें छिपी जज्बातों की गहराई को भी वो शिद्दत से महसूस करती हैं। उनकी यह पसंद महफिलें में एक अलग ही रूहानी माहौल घोल दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ओके जी, एम ताहिर साहब जी और कमर शंकर पांडे जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल सॉन्ग है। अच्छा जी, और गजानंद जी लिखते हैं कि दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और काजल झक्का जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है, आरजे कंसा जी आपकी पसंद। जाकिर खान जी लिखते हैं कि ये तेरे बगैर हमें इस जिंदगी की जरूरत नहीं है, और तेरे सिवा हमें किसी और की चाहत नहीं, और तुम ही रहोगे मेरे दिल में हमेशा, क्योंकि यानी तेरे सिवा किसी और को इस दिल में आने की जरूरत नहीं और इजाजत नहीं। क्या बात है, ये फीडबैक सुनते हैं।
1: मिशायर
0: हाँ, क्या हुआ क्या हुआ?

0: ओके जी,
1: आया नहीं अभी तक वहाँ से जवाब। देखो बाकी सॉन्ग बहुत प्यारा था, थैंक यू,
0: धन्यवाद देते हैं। और गोविंदा खंडाडे जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। इसी बात पर जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो तीन दोस्तों की है, हमारे सर्वेश भगा जी, अशोक देशमुख जी और आत्माराम पाटिल जी, सुनवाते हैं।
2: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार,
2: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी।
2: आज का थीम है स्टार ऑफ द वीक, तो मुझे एक गीत सुनना है। फिल्म का नाम है प्रेम रोग और गाने का बोल है, मैं हूँ प्रेम रोगी मेरी दवा तो कराओ।
0: okay.
2: ये गीत सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूरत को और जितने भी हॉट स्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
0: ओके सर जी, और इसी गाने में हमारे सर्वेश भगत जी भी शामिल हैं, तो उनके भी हम शामिल करते हैं, सर्वेश भगत जी का भी। कहाँ गए सर्वेश भगत जी? हाँ ये रहे सर्वेश भगत जी।
3: अर्जय अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है प्रेम रोग और गाने का बोलो मैं हूँ प्रेम रोगी और हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरत दहा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, वर्ष किशोर भगत, आनंद शेखर, प्रकाश, सुनील कुमार, मुन्नी कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, आर जे अमन सर जी, सुंदरता की मूरत जी, आर जे वंशिका जी, आर जे कांछा जी, आर जे सोनी जी, आर जे एमएस परनार जी, आर जे रत्ना जी और सभी आर जे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें शामिल है, सभी को सुना दीजिएगा। जयराम जी के
0: अमन सर जी। और इसी गाने में जैसे कि हमारे आत्माराम जी शामिल है, तो आत्माराम जी का भी ऑडियो सुन लेते हैं।
4: हेलो अमन खान सर जी,
0: जी जी,
4: आज ऋषि कपूर पर आपको गाने बजाने हैं सर, तो आज हमने मूवी लाई है सर, मूवी का नाम है प्रेम रोगी और आर्टिस्ट है ऋषि कपूर और गीत के बोल कुछ इस प्रकार के है सर, मैं हूँ प्रेम रोगी मेरी दवा तो करा लो, तो ये गाना बिल्कुल सुना दो। सबसे पहले गीत मैं आपको आपकी सुंदरता की मूरत को,
0: थैंक यू सो मच।
4: वैसे अशोक देशमुख जी है, सर्वेश भगत जी है, सैयद विनु जी है, गजानन बहु सालोकार है, फुले भक्त संजय बहु, सभी को ये गीत सुना दो सर। और हमारी बहना है काजल जी, कुंता बहन जी, बबीता जी, ज्योति जी और सभी को सुनने वाले को बिल्कुल सुना दो, मैं अर्पण मोदी।
0: बिल्कुल, मैं हूँ प्रेम रोगी और इस प्रेम रोगी के बाद आता हूँ तो आपको ऋषि कपूर के बारे में जानकारी दूंगा। फिलहाल ये गाना

0: बिल्कुल मैं हूँ प्रेम रोगी प्रेम रोगी प्रेम रोगी। हाँ बिल्कुल, मुझे लवेरिया हो चुका है। और कई जनन जी लिखते हैं कि आदरणीय अशोक देशमुख जी, सर्वेश भागा जी और आत्माराम जी की पसंद लाजवाब लगी है। और ये फिर
1: सभी गाने एक से बढ़कर एक। मेरी उम्र के नौजवानों, दर्द दिल दर्द जिगर, मैं शायर तो नहीं, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, लाजवाब प्रोग्राम, मज़ा आ जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत अच्छे अच्छे गाने चलने वाले हैं आज
0: जी। बिल्कुल,
1: इसीलिए मैं पहले से जुड़ चुका हूँ आज तो।
0: अच्छा।
1: सब काम धंधे छोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओ माय गॉड, ऐसा है क्या? और हमारे ये नसीम खान जी लिखते हैं कि हमारे ये सभी दोस्तों की पसंद बहुत ही अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं। और बीरबल बघेल साहब लिखते हैं कि शानदार नगमा है जी, सभी दोस्तों की। और ये फीडबैक
2: हरजे अमन सर जी, धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। हमारा तीन भाई का फरमाइश, हमारा, अशोक देशमुख भाई जी का, आत्माराम पाटिल जी का, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर, अपने प्रोग्राम में जगह देने के लिए।

0: बिल्कुल। और यहाँ पे राजेश कुमार जी से की इतनी दोस्तों की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है, और अशोक दशमुख जी से धन्यवाद हमारे सर, आपने हमारे फरमाइश का गीत सुनवाया, आपका बहुत शुक्रिया। ओके जी, और मंगेश दशमुख जी से की अमन सर जी सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने को सुनवाने के लिए, और MD फैज आलम जी।
1: अस्सलाम वालेकुम भाई जान, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम मज़ा आ रहा है, काम करते करते सुन रहे हैं, फीडबैक देने का समय नहीं है, काम दो मिनट रोक करके फिर से फीडबैक देना पड़ रहा है।
0: अच्छा।
1: रहा नहीं गया ये गाना सुन
0: अच्छा,
1: के
0: अच्छा, अच्छा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का, और जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं।
0: ओके धन्यवाद, थोड़ा सा गाना सुनते हैं और

0: बिल्कुल अभी तक मेरे पैर नहीं आई है। ओके, काजल सेखा जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा है और इन्होंने यानी कि दावा भी भेज दिया है। और माय गॉड, अच्छा। और यहाँ पे तोहिदीना खातून जी लिखते हैं वाओ वाओ नाइस सॉन्ग चल रहा है। और यानी कि विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। ओके जी, और बाबूलाल जी लिखते हैं कि आत्माराम पाटिल जी और सभी की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है। और प्रियंका जी क्या कहती है?
1: अमन जी, अभी आकांक्षा जी ने एक सॉन्ग की फरमाइश की थी, वो सॉन्ग काफ़ी अच्छा था, जिसकी दो लाइन में सुनाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ इसको मैं सुना देती हूँ। दर्दे दिल

0: उन्हीं के सॉन्ग पे मैंने फीडबैक दिया है, क्योंकि हम लोग उनके प्रोग्राम में फीडबैक नहीं दे पाते हैं, इसलिए ये सॉन्ग वो ज़रूर सुनिए। थैंक यू।
1: ओके, धन्यवाद देते हैं आपको भी। और एक मेरे पास फीडबैक है, ये सुनते हैं।
2: मैं नहीं चाहती वो मेरे बुलाने से आए, मैं चाहती हूँ वो रह न पाए और किसी बहाने से आए। मेरे इश्क की तासीर में वो शिद्दत हो इतनी, मेरे इश्क की तासीर में वो शिद्दत हो इतनी कि वो जमाने भर की बंदिशें भुलाए और आए। मुझसे मिलने की बेताबी झलकती हो उनकी आंखों में, और वो दिल के हाथों मजबूर होकर मुझे गले से लगाने। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू डियर लिसनर्स ऑफ रेडियो हॉट स्टार फैमिली। मैं आरजे कांक्षा, और आज के दिन के लिए एक खास पैगाम और है, क्योंकि मेरे किसी बहुत ही करीबी मित्र, दोस्त या कुछ भी कह लीजिए, का आज बर्थडे है, तो उनके लिए चंद लाइनें हैं, और साथ ही साथ में मेरे लड्डू गोपाल यानी कन्हैया के लिए भी। कन्हैया की कृपा रहे, हर पल मुस्कान रहे, आपकी ज़िंदगी में खुशियों का आसमान रहे, जिंदगी में खुशियों का आसमान रहे, जन्मदिन पर मिले आपको दुआओं का ऐसा संसार, हर कदम पर मिले अपनों का सच्चा वाला प्यार। लड्डू गोपाल के चरणों में बस यही अरदास है हमारी, आपकी हर सुबह खूबसूरत और हर शाम हो प्यारी, जो ख्वाहिश दिल में हो वो पूरी होती जाए, जो दर्द कभी मिले वो आपसे दूर होता जाए, कृष्ण की बंसी की मिठास आपके जीवन में घुले, राधा कृष्ण के प्रेम जैसे रिश्ते दिल में खिले, मुरलीधर आपकी हर राह को रोशन कर दें, आपकी झोली में खुशियों के मूर्ति भर दें। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर कान्हा से यही इतनी सी इल्तिजा है, इतनी सी दुआ है, आपका हर आने वाला साल पहले से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, नजर न लगे आपकी हंसी और आपकी पहचान को, लड्डू गोपाल हमेशा अपने आशीष से थामे रखे हम सभी को। जन्माष्टमी की ढेरों ढेरों बधाइयां और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा आपके जीवन में प्रेम, शांति, समृद्धि और अनगिनत खुशियां लेकर आए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्पेशल विशेस फ्रॉम माय साइड फॉर यू मिस्टर अफलातून, एंड सुकून, शांति, चाहत, करार, राहत, इन शॉर्ट में बोलूं तो लड्डू गोपाल और मेरे उस खास मित्र को जो कि वाकई मेरे लिए बहुत खास है, तो थैंक यू सो मच एंड राधे राधे।
1: ओके, थैंक यू सो मच इतना प्यारा फीडबैक देने के लिए। और यहाँ पे यानी मीना इब्राहिम जी लिखते हैं कि लाजवाब, बहुत ही लाजवाब डिमांड है, थैंक यू सो मच इसके लिए भी। बीरबल बघेल जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है, अच्छा जी। ओके, नसीम खान जी लिखते हैं कि ओके आप उधर भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा। और मोहन निवारी जी लिखते हैं कि सुपर कार्यक्रम चल रहा है, मजा आ रहा है, धन्यवाद देते हैं आपको भी। रवि मोहन जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब फीडबैक आ दिए आदरणीय आकांक्षा जी की, जी बिल्कुल। और हमारे ईशु भगत जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और ईश्वरलाल जी लिखते हैं कि झक्कास सॉन्ग, अच्छा जी। ओके, अगला जो डिमांड है मैं प्ले करूंगा, लेकिन उससे पहले ऋषि कपूर के बारे में ये छोटी सी जानकारी आज तक आपकी खिदमत में पेश है।
3: जिन्हें हमने प्यार से सदैव पुकारा चिंटू जी, सुपरस्टार ऋषि कपूर, जिन्होंने हमारा मन बहुत बहलाया, ये दास्ता है ऋषि कपूर। जन्म 4 सितंबर सन 1952 में हुआ, बहुत ही रईस और हुनरमंद परिवार में इनका जन्म हुआ था। दादाजी पृथ्वीराज कपूर, पिताजी राज कपूर, माता कृष्णा राज कपूर। ऋषि कपूर ने बचपन से ही फिल्मों का माहौल देखने नेशनल फिल्म अवार्ड पर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट से नवाजा गया था। और ये किस्सा मशहूर रहा कि जब इन्हें फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए साइन किया जा रहा था और ये बात इनके कानों में पड़ी, तो ये भागकर अपने कमरे में गए, अपनी एक कॉपी निकाली और उस पर ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस करने लगे। ऋषि कपूर साहब का जन्म मुंबई में हुआ था, हालांकि इनका परिवार पेशावर से ताल्लुक रखता है। इन्होंने कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून में पढ़ाई की, कैंपियन स्कूल मुंबई में भी और मेयो कॉलेज अजमेर में भी। ये अपने माता पिता की दूसरी संतान, इनके बड़े भाई रणधीर कपूर और छोटे भाई राजीव कपूर, बहनें रीमा जैन और ऋतु नंदा। ये बात तो सभी जानते हैं कि फिल्म मेरा नाम जोकर से इन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन इस बात पर जरा गौर करना होगा कि हमारे चिंटू जी ने दरअसल अपने पिताजी की फिल्म श्री 420 में भी अपना अभिनय दिखाया था, जिसमें इनके साथ इनके बड़े भाई डब्बू जी और इनकी बहन भी थीं। गाना था प्यार हुआ इकरार हुआ, जिसमें बरसात में तीन बच्चे चले आ रहे होते हैं और उसी शॉट में नन्हे से चिंटू जी भी नजर आए थे। फिल्म बनाई बॉबी, जिसमें एक नई लड़की डिंपल कपाड़िया को साइन किया गया। इस फिल्म में बॉबी का किरदार निभाने के लिए नीतू सिंह भी कोशिश कर रही थीं, पर बाजी डिंपल कपाड़िया ने मार ली। फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर ने राज का किरदार निभाया था और ये फिल्म सिर्फ सुपर डुपर हिट ही साबित नहीं हुई, बल्कि ऐसी मील का पत्थर साबित हुई जिसने हिंदुस्तान में रोमांटिक सिनेमा का रुख बदल के रख दिया। ऋषि कपूर साहब के लिए ये बात भी मशहूर रही, बचपन में इनकी माँ जब इन्हें डांटती तो ये अक्सर आईने के सामने जाकर खड़े हो जाते और अपने आप को रोते हुए देखते। ये समझने की कोशिश करते कि मेरे एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं, मैं रोता हुआ कैसा दिखता हूँ। तब इनके दादाजी कहा करते थे कि चिंटू बड़ा होकर जरूर एक्टर बने, कमाल का रोमांस और आगे जाकर एक्शन भी इन्होंने भरपूर किया। बहुत ही कम उम्र में ये सबसे बड़े सुपरस्टार्स की फेहरिस्त में शामिल हो गए। राज कपूर साहब की फिल्म प्रेम रोग में इन्होंने बतौर हीरो काम किया, जिसमें इनके साथ थी पद्मनी कोल्हापुरे। फिल्म सागर को कैसे भुलाया जा सकता है, नसीब, कातिलों के कातिल और अमर अकबर एंथनी के अकबर इलाहाबादी का किरदार तो इन्होंने बखूबी निभाया। ऋषि कपूर साहब मल्टी स्टारर फिल्म्स में भी सुपरहिट हो रहे थे और बतौर सोलो हीरो भी। इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया तो विनोद खन्ना के साथ भी, जितेंद्र के साथ काम किया तो अनिल कपूर के साथ भी। इनके चाचा रहे महान अभिनेता शम्मी कपूर और शशि कपूर। हर तरफ फिल्मों का माहौल था, स्टारडम था, सफलता। ऋषि कपूर ने हर तरह की फिल्मों में काम किया, चाहे वो लैला मजनू रही या फिर बड़े दिलवाला, और बहुत सारी नई हीरोइंस के साथ ये नजर आए, जैसे कि जया प्रदा, मीनाक्षी शेषाद्री, दिव्या भारती। सन 1999 में इन्होंने फिल्म डायरेक्ट करी आ अब लौट चलें, जिसमें राजेश खन्ना, अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय मुख्य भूमिकाओं में थे। और उसके बाद ऋषि कपूर लौटे फिल्मों में कुछ बड़े जबरदस्त चरित्र निभाते हुए, जैसे कि नमस्ते लंदन, हम तुम, लव आजकल, अग्निपथ में तो ये बतौर विलन काम करते नजर आए थे, और फिल्म डी डे में भी। ये अपने बड़े भाई रणधीर कपूर के साथ एक फिल्म में नजर आए थे, वो फिल्म रही हाउसफुल 2। इनकी सबसे रोमांटिक जोड़ी नीतू सिंह के साथ ही मानी गई, चाहे वो खेल खेल में रही या फिर कभी कभी। ऋषि कपूर साहब की शादी हुई नीतू सिंह से। नीतू सिंह दरअसल एक सिख परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए, रिधिमा और रणबीर। रिधिमा कपूर की जल्दी शादी हुई और वो दिल्ली जाकर बस गई। बेटे रणबीर कपूर ने फिल्मों में सुपर स्टारडम हासिल कर ली। ऋषि कपूर इस बात के लिए भी मशहूर रहे थे कि सुबह 10-11 बजे से पहले मैं शूटिंग के लिए नहीं आऊंगा और रात 8 बजे के बाद शूटिंग करूंगा भी नहीं, पर अपने काम पर ये सदैव बहुत ध्यान देते थे। यही वजह रही कि इनके करियर को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तरफ ये नाचते गाते एक्शन करते सुपरस्टार के रूप में नजर आए, तो दूसरी तरफ बड़े ही मुख्तलिफ किरदार निभाते हुए। ऋषि कपूर साहब को फिल्म बॉबी के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा गया था और सन 2008 में फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। इन्हें रशियन गवर्नमेंट की तरफ से भी अवार्ड से नवाजा गया और ये अवार्ड की फेहरिस्त वाकई लंबी है। अभी अग्निपथ और कपूर एंड सन्स जैसी फिल्मों की सफलता पर ऋषि कपूर फूले ना समा रहे थे कि तभी यह खबर आई कि इन्हें कैंसर है। साल रहा सन 2018। इनका इलाज भी मुकम्मल हुआ। ये न्यूयॉर्क गए थे अपने इलाज के लिए और ठीक होकर ये इंडिया वापस आ गए। वो और बात है, कुछ वक्त इन्होंने काम भी किया, पर फिर इन्हें मुंबई के सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया। तारीख थी 29 अप्रैल सन 2020। ये वो वक्त भी था जब कोविड महामारी की वजह से पूरे विश्व में लॉकडाउन भी था, और अफसोस की बात यह है कि जो नजर आए थे फिल्म 102 नॉट आउट में, वो 30 अप्रैल सन 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह चल बसे। मुंबई में ही इनका अंतिम संस्कार किया गया, पर ऋषि कपूर जैसा जिंदा दिल, जबरदस्त अभिनेता बहुत मुश्किल से मिलता है। इनके जैसा ना कोई था और ना ही कोई और होगा।
1: धन्यवाद देते हैं, और इसी बात पर अगला जो डिमांड प्ले करते हैं वो जाकिर खान जी का पर्दा है पर्दा। इंजॉय कीजिए।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं।

बिल्कुल, इन पर्दा है पर्दा और पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी से हमारे शारजी अमन जी, आज मैंने यानी कि ट्रेन में एक और यात्री को रेडियो हॉटस्टार का प्रोग्राम सुना दिया है, वह इतना खुश हुआ कि उसने अपने मोबाइल में रेडियो और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद।

0: सता कर इस तरह अक्सर मजा लेते हैं ये दिलबर। हाँ यही दस्तूर है इनका, सितम मशहूर है इनका।
1: बिल्कुल, और यहाँ ये फीडबैक भी शामिल करते हैं।
2: जी अमन सर जी, जाकिर खान जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
1: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आपको भी। और फिलहाल ये फीडबैक है हमारे पास किनका, ईश्वरलाल जी लिखते हैं कि बहुत सुपरहिट सॉन्ग है, और गजानंद जी लिखते हैं कि जाकिर खान जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, और नईम क्या नाम है, ये नसीम खान जी लिखते हैं कि ये कवाली अकबर अमर अकबर धोनी की पसंद, यानी जाकिर खान जी की पसंद बहुत अच्छी लगी है। और आदित्य तिवारी जी ने अभी जो गाना चल रहा था ये पर्दा है पर्दा, बहुत ही बेहतरीन गाना है। धन्यवाद देते हैं फरमाइश करने वाले दोस्त को, क्योंकि जी बिल्कुल धन्यवाद देते हैं आपको भी। और राजेश कुमार जी लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड है जी, और मोहन वाले जी लिखते हैं कि ये गाना भी बहुत ही प्यारा है, और काजल झका जी लिखते हैं गाना बहुत ही शानदार है। बाबूलाल जी लिखते हैं कि हमारे दोस्त जाकिर जी की डिमांड बहुत ही प्यारी है, और जफर रंगरेज जी जुड़ चुके हैं राजस्थान से, बहुत बहुत वेलकम है। अगला जो डिमांड है वो हमारे अब्दुल जब्बार अंसारी जी का है, सुनना चाहते हैं इस रेशमी पाजेब की।

0: बिल्कुल, बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं। और सरबजी से जी क्या कहते हैं?
1: धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गीत चलाया और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिए उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है और सभी गीत एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, तो सुनते रहिए होशियार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरबजीत सेठी फाजिल का पंजाब से
0: धन्यवाद देते

0: और काजल झका जी लिखते हैं गाना तो मुझे दिल को छू गया है। अच्छा जी, और ईश्वर लाल जी लिखते हैं कि बेहतरीन और लाजवाब डिमांड है, और राजेश कुमार लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है जी। ओके, और आत्माराम जी क्या कहते हैं?
1: प्यारे अमन सर जी, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कुछ टाइम हमारा आयोजन के लिए मंदिर में गया, इसलिए हम लेट जुट गए हैं।
0: कोई बात नहीं,
1: अभी जुट गए हैं तो प्रोग्राम पूरा होने तक बिल्कुल शामिल रहेंगे।
0: थैंक यू सो मच आपका भी। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डिमांड है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और हमारे जाकिर खान जी लिखते हैं थैंक यू अमन सर जी गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। मोहन वाले जी लिखते हैं अमन जी गाना बहुत ही प्यारा था। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे सुभाष तिवारी जी का है, सुनना चाहते हैं। पूरब से चली पुरवाई,

चली पुरवाई के छम छम पैर बोले बस फिर देखा चुके निशान साहब लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है ओके जी और काजल झका जी लिखते हैं गाना तो दिल को छू गया मेरा ओके जी और हुकुम चंद जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी डिमांड है थैंक यू सो मच इस गाने के लिए और इसके लाल जी लिखते हैं वेरी नाइस सॉन्ग है अमन सर जी और प्रियंका जी लिखते हैं नाइस सॉन्ग जी और गजानंद जी लिखते हैं पूरा से चली पुरवाई के छम छम पैर बोले गाना बहुत ही प्यारा है और बाबूलाल अंजना लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत ही पसंद है सुभाष तिवारी जी आपकी पसंद।

0: और नंदलाल जी के बहुत ही लाजवाब डिमांड। थैंक यू सो मच इस गाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ओके, और यहाँ पे दीपक कुमार जी लिखते हैं कि अमन जी यानी कि कल आप अक्सरी सुनने वाले के लिए पंचा का दिन है, मतलब शनिवार और रविवार। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कल अंतरामस्ती होगा ना। आत्मराम जी लिखते हैं कि अमन सर जी सभी भाइयों का पसंद सुनवाने के लिए धन्यवाद देते हैं। अगला डिमांड मीना इब्राहिम जी का है, सुनना चाहती है मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है, इंजॉय कीजिए।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

बिल्कुल, मुझे भी कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है। और बागेश्वर निषाद जी लिखेंगे सुपर सॉन्ग है जी बिल्कुल। और दत्ता जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और मीना जी लिखेंगे मेरे रिक्वेस्ट को प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और काजल झक्का जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, ओके थैंक यू। मीना इब्राहिम जी, बाबूलाल जी लिखते हैं कि मीना इब्राहिम जी की डिमांड बहुत ही प्यारी है। और राजेश कुमार लिखते हैं कि सुपर डिमांड। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये गाना भी बहुत प्यारा है। अगला जो डिमांड है हमारे दो तीन दोस्तों की है, मतलब यानी ग्रुप फरमाइश है, जिसमें है हमारे गजन सलोकार जी हैं, और यानी कि किशन पाल चाक्या जी हैं, और नीलेश बिरोकार जी हैं। ये सभी सुनना चाहते हैं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, बिल्कुल सोचिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे और बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं। ईश्वर लाल जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है और धन्यवाद देते हैं। और निशांत साहब बोल लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अमन सर जी को प्यार भरा नमस्कार है, हम सभी साथियों को गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और काजल जगह जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा है और ये फीडबैक।
1: आरजे अमन सर जी, गजानन सोलकर जी का पूरा ग्रुप का भाई अपने गाने में शामिल किए हैं और सभी भाई और बहन अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: और नीलेश पिरकार जी इनके ग्रुप में शामिल हो गया तो उनको धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि गाना

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सर फिर भी आ चुके हैं और कुंता बिनी जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम करते हैं, लिखते हैं गुड इवनिंग अम्मा सर जी। और मैं भी जुड़ चुकी हूँ रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे, और सभी सुनने वालों को राधे राधे और जय श्री कृष्णा और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी दोस्तों को गजन सुरकार ग्रुप की डिमांड ब्यूटीफुल लगी, और सभी दोस्तों को धन्यवाद देते हैं। और कजन झका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा है, और गजन जी लिखते हैं कि आमना खान जी की पसंद बहुत ही प्यारा है, और विष्णु क्या नाम है इन विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत पसंद आया, धन्यवाद देते हैं। अगला जो डिमांड है वो बिंदिया जी की, और बिंदिया जी सुनना चाहती हैं ये गाना, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बनाते बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं। निशांत है वो देखते हैं, बहुत ही प्यारा गाना है जी। ओके जी, और राजीव चौधरी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। राजीव चौधरी जी लिखते हैं कि जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबूलाल लंजा लिखते हैं कि ये बिंदिया जी की पसंद मुझे बहुत ही प्यारी लगी है। और काजल झका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा है। ओके, और मीना जी लिखते हैं बहुत ही शानदार फरमाइश है। और ये फीडबैक
1: तोड़ो ला दिल हमारा, जाने तमन्ना वादा है वादा, अब ना कहेंगे हम तुमको राधा, कर दो हमें माफ तुम। तु तारा तोड़ो ना दिल हमारा। थैंक यू।
0: वेलकम जी, अगला जो डिमांड है वो बहुत से दोस्तों का है, और इसमें डिमांड में शामिल है हमारे बाबूलाल अंजाना, उनके बाद है निशांत राय बोले जी, और उनके बाद बता रहा हूँ कौन कौन से दोस्त हैं।

जहाँ से मुझे ढूंढना पड़ा नाम, और ये हमारे यन विष्णु चंद्र जी भी हैं इस गाने में शामिल हो रहे हैं, तो यन विष्णु चंद्र भी आपका भी नाम इसमें शामिल हो रहा है। और एक काम करिए, तब तक गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, उसके बाद मैं नाम बताते रहूँगा।

0: और इसी गाने में शामिल है हमारे धनेश मिश्रा जी। एंजॉय कीजिए।
1: भूल राधा भूल तूने ये क्या किया।
0: दिल्ली वाले धनेश मिश्रा।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दिया, और चूंकि इसमें बहुत से दोस्त शामिल थे इसलिए मैंने गाना थोड़ा सा लंबा चला दिया है। और कुंता मैंने लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी डिमांड है, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों के लिए। और निशांत अग्रवाल लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा है और मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और निशांत क्या नाम है इनका, कृष्ण चंद्र जी लिखते हैं कि बोल रहा था बोल तूने ये क्या किया, गाना मेरा पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और काजल झका जी लिखते हैं ये भी गाना बहुत ही प्यारा है और ये फिर गए
1: अरजे अमन सर जी बहुत भाई इस गाने में शामिल हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका। और मीना इब्राहिम जी लिखते हैं वाह क्या बात है क्या गाना है, दिल खुश हो गया इस गाने को सुनकर। नसीम खान लिखते हैं कि जी आपका गाना मुझे मिल चुका है, जब समय आएगा तो जरूर प्ले हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बागेश्वर निषाद लिखते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग फ्रॉम द मूवी बोल रहा बोल जी। और बाबूलाल लंगा लिखते हैं कि हम सभी दोस्तों गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नंदलाल जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया बेस्ट गाना सुनवाने के लिए और ये फिर गए।

0: बहुत ही प्यारा सॉन्ग था अमन जी, थैंक यू इतना सुंदर सॉन्ग सुनाने के लिए।
1: वेलकम जी आपका भी। और अगला जो डिमांड है वो हमारे मिसाल अंगद जी का है। मिसाल अंगद जी क्या सुनवाना चाहते हैं, सुनवाते हैं।
2: हेलो अमन सर
1: जी,
2: मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र से आपके लाइव कार्यक्रम में जुड़ गया हूँ। और अमन सर जी आज के स्टार ऑफ द वीक ऋषि कपूर है, तो अमन सर जी ऋषि कपूर की सुपरहिट फिल्म जो ऋषि कपूर अरबाज खान और जूही चावला इस फिल्म के कलाकार है, तो फिल्म का नाम है दरार और गाने के बोले ए प्यार प्यार क्या है एक राज राज क्या है। अमन सर जी ये गाना मुझे सुनने का है और ये गाना सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करूंगा क्योंकि गाना बहुत एटम सॉन्ग वाला ऐसा गाना है। फिर हमारे आदरणीय गजानन सालोकार जी, सर्वेश भगत जी, हिरामन खिराड़े जी, अमोल कांबले जी, फुले भक्त संजीव भाव जी, मोहन नेवारे जी और आदरणीय बबीता जी, आरजे आकांक्षा जी और आरजे वंशिका जी, इन सभी को मैं ये गाना डेडिकेट करूंगा। तो अमन सर जी गाना सुनवा दो, धन्यवाद।
1: एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल, ये प्यार प्यार क्या है वैसे फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं। ईश्वरलाल जी लिखते हैं झक्का सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और दत्ता जी लिखते हैं मिसालंगा जी के पसंद सुपरहिट लगी है। और मीना जी लिखते हैं वाओ क्या बात है, क्या गाना चल रहा है। और आज बहुत से दोस्त गायब हैं, अभी तक मुझे दिख नहीं रहे, जैसे कि आमना खान, ज्योति खटवाटे और मनीष शर्मा जी, और भी बहुत से दोस्त हैं। और बाबूलाल अंजाना जी लिखते हैं कि मिसालंगा जी के पसंद बहुत अच्छी लगी है। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि गजब का सॉन्ग है, अच्छा जी। और बिरबल बघेल लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत पसंद है, शानदार पसंद के लिए थैंक यू सो मच। इसके बाद अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करूंगा, ये काजल झक्का जी का सुनना चाहती हैं। लिखते हैं कि मैं काजल झक्का, मैं सीतामढ़ी बिहार से, और ये गाना सबसे पहले मिठू मियाँ जी से, और उनसे मेरा सवाल भी है, और सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो सुनवा दिया, इन्जॉय कीजिए।

0: बिल्कुल वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वैसे ईश्वर आदि लिखने के काजल सहगा जी का पसंद हमेशा की तरह झक्कास रहती है। हाँ सही कहा आपने। और सर्वेश सहगा जी,
1: आरजे मनसा जी, मिसाल अंगद जी या काजल झा जी, दोनों आदमी अपने अपने गाने में शामिल किए हैं। दोनों आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद।

0: है क्या जी हमको बताओ।
1: बहुत ही प्यारा गाना था, थैंक यू।
2: ओके जी, वेलकम करते हैं आपका भी। और निशांत बोल लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, मेरा फेवरेट गाना है। ओके, और बिलवर बाघे लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है ये। और यहाँ पे बागेश्वर निशाज लिखते हैं कि वेरी वेरी पॉपुलर सॉन्ग है ये। और नसीम खान जी लिखते हैं कि ये प्रेम रोग का गाना मुझे बहुत अच्छी लगी है, थैंक यू सो मच काजल झक्का जी, इतना प्यारा गाना सुनवा दिया आपने। और ये फीडबैक।
3: अस्सलामुअलैकुम भाईजान, बहुत सुपर प्रोग्राम चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है प्रोग्राम में, और सभी दोस्तों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। MD फैज आलम हैदराबाद से।
2: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और मंगेश दशमुख जी जीतने के आर्जे मन जी, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच स्टार्ट ऑफ द वीक ऋषि कपूर जी के साथ। और ये फिर
4: मोहब्बत है क्या चीज़ हमको बताओ, ये गाना बहुत ही फैंटास्टिक था। और मोहब्बत का अगर शाब्दिक अर्थ जानना हो तो श्री कृष्ण से बेहतर और या उनकी जीवनी पढ़ने से बेहतर जगह कुछ और नहीं मिल सकता है। बट ये गाना बहुत अच्छा लगा। और अमन सर जी, थोड़ा सा पूजा के कार्यक्रम में बिजी होने के कारण लगभग 45 मिनट तक कार्यक्रम से दूर रहे, थोड़ा सा हमें भी दुख हो रहा है कि हम नहीं सुन पाए, बट क्या है कि पूजा है तो थोड़ा सा उसमें शामिल होना जरूरी था। थैंक यू भैया,
2: वो भी जरूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और यहाँ पे कुंता बहनी लिखते हैं कि शानदार डिमांड के लिए सभी दोस्तों को थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके जी, और इसी बात पर मीना इब्राहिम जी लिखते हैं लवली लवली लवली सॉन्ग है, ब्यूटीफुल सॉन्ग के लिए दिल खुश हो गया है। काजल झका जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और आत्मानंद जी लिखते हैं कि रफू चक्कर का गाना मुझे बहुत ही पसंद आया। अप्रतिम और ईश्वर राज जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग है काजल झका जी का। ओके, और ये फीडबैक सुन लेते हैं।
5: अमन जी, वही होता है जो 1-to-1 होता है।
2: अच्छा। बोलिए।
5: बहुत मस्त गाना चल रहा है, धन्यवाद अमन जी, राधे राधे, जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं हमारे सभी लिस्नर को, सभी दोस्तों को, धन्यवाद।
2: ओके जी, अगला जो डिमांड है हमारे राहुल पासी जी का है। राहुल पासी जी,
6: प्रेम ग्रंथ इस दुनिया में, प्रेम ग्रंथ जब लिखा जाएगा तेरा मेरा नाम सबसे ऊपर आएगा, प्रेम ग्रंथ इस दुनिया में।
2: एंजॉय कीजिए राहुल पासी जी।

0: बिल्कुल, इस दुनिया में प्रेम ग्रंथ जब लिखा जाएगा तब ये फीडबैक शामिल किया जाएगा।
1: अरजी अमन सर जी, राहुल पासी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और एम ताहिर साहब जी लिखते हैं कि अमन खान जी, आज की शाम हिंदी सिनेमा के साथ बाहर चॉकलेट पर ऋषि कपूर यानी चिंटू जी के वो यानी कि कातिल लाना ये मुस्कान और गले में डफली और आंखों में रोमांस, आज हिंदी की मतलब आधुनिक की मीठी यादों के नगमों से आप सो को सजा रहे हैं, और आज की शाम उन गानों ने

0: वेलकम बैक। और यहाँ पे ईश्वरलाल जी लिखते हैं बेहतरीन और लाजवाब गाना है। जी बिल्कुल। और निशांत है बोल लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना है, सुपर हिट वाकई। और मीना इमरान जी लिखते हैं वाओ क्या बात है, ये गाना तो मुझे बहुत पसंद है। और साथ ही साथ इधर सुर बैग आजा भाई बा हाँ। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि इस दुनिया में प्रेम ग्रंथ जो लिखा जाए गाना मुझे बहुत ही प्यारा है। और ये फीडबैक सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
1: वाह सुपर सॉन्ग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एमडी फैज आलम हैदराबाद से, बहुत खूबसूरत गाना ये।
0: जी बिल्कुल। और अकुंता भी लिखते हैं बहुत खुश और डिमांड है। और राहुल पासी जी आपकी पसंद, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा गाना सुनवा दिया आपने। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं फंटास्टिक सॉन्ग। इसी बात अगला जो डिमांड है वो यानी जन्नत जी का है। जन्नत जी सुनना चाहती हैं तू है वही, एंजॉय कीजिए। और ये गाना वो खुद सुनना चाहती हैं और मुझे डेडिकेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जन्नत जी।

0: ये वादा रहा वादा रहा वादा रहा। बहुत सारे फीडबैक भी आ चुके हैं मेरे पास। अनिल कश्यप जी देते हैं सुपर सॉन्ग है और ये फीडबैक।
1: तू है वही दिल जिसे अपना कहा, तू है जहां।

0: यू इतना प्यारा सॉन्ग सुनाने के लिए।
1: वेलकम जी आपका भी, और दत्ता जी की जन्नत जी आपका गाना बहुत ही प्यारा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और काजल झका जी सिंह जी ये गाना बहुत ही लाजवाब है, और ईश्वरलाल जी सिंह झक्का सॉन्ग के लिए थैंक यू सो मच जन्नत जी। और मीना इन टाइम जी वाह क्या बात, ये हुई ना बात, जबरदस्त सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और ये फीडबैक में आत्माराम जी सिंह की स्टार इन चॉइस में बहुत ही प्यारा प्यारा गाना प्ले हो रहा है, सभी को धन्यवाद देते हैं और ये फीडबैक सुनते हैं।
2: हवन जी आज पूरा भारत जागेगा, आज पूरा विश्व जागेगा, क्योंकि जगत के पालनहार तीनों लोकों के स्वामी आज जन्म लेने वाले हैं, इस धरती पर आने वाले हैं। द्वारका में धूम है, मथुरा में धूम है, सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा मध्य प्रदेश से।
1: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और बीरबल बघेल लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है जी, और एमडी5 जी क्या कहते हैं,
3: ये गाना भी लाजवाब है, एकदम दिल खुश करने वाला, बहुत बहुत शुक्रिया एमडी5 आलम हैदराबाद से।
1: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये गाना भी बहुत मस्त लगा है, धन्यवाद इस गाने के लिए भी। और कुंता भी ने लिखते हैं कि लाजवाब लाजवाब लाजवाब एंड सुपर डिमांड, थैंक यू सो मच जन्नत जी। अगला जो डिमांड है हमारे नंदलाल यादव जी की है, अंबर की चांदनी सूरज की रोशनी,

0: चीज है लड़की, वैसे फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं, शामिल करता हूँ। ये क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, नंदलाल यादव जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। और सर्वजीत सर जी लिखेंगे कि कार्यक्रम तो हमेशा की तरह शानदार जबरदस्त चल रहा है। और आत्माराम जी क्या कहते हैं।
2: भाई नंदलाल यादव जी की फरमाइश बहुत ही सुपर चल रही है, और अमन सर जी कल भी इनकी फरमाइश वन नंबर पर थी
0: जी। जी
2: हम भूले नहीं, शुक्रिया उनको। मैं आत्माराम पाटिल।
0: ओके जी। और यहाँ पे एम डी फैजी लिखते हैं वाव सुपर झकास बोले तो। और दत्ता जी लिखते हैं कि नंदलाल जी आपकी पसंद बहुत अच्छी लगी है, और नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है, एक खोलने के बाद पीछे नहीं जाता है जल्दी। काजल झका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा है, और ईश्वर आज जी लिखते हैं आज सभी दोस्तों के डिमांड बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। अगला जो डिमांड है एम डी फैजी का।
3: अस्सलाम वालेकुम भाई जान, अभी फुर्सत हुआ तो आपको सोचा कि एक सॉन्ग डेडिकेट किया जाए, तो ये सॉन्ग है फिल्म दरार का, एक लड़की मेरा नाम जो ले। तो इस गाने में शामिल हैं सबसे पहले आप, और आपके सपनों की रानी सुंदरता की मूरत जी, और रेडियो हॉट स्टार एंड गाना के सभी आरजे और सभी दोस्त शामिल रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, गाना चला दीजिए।

0: सच में भाई कहाँ से चुन कर लाए हैं, एक ही बार आए हैं तो छक्का लगा दिए भाई। वैसे फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं, शामिल करता हूँ मैं विष्णु चंद्र जी लिखते हैं ये गाना तो बहुत ही प्यारा है। अच्छा जी, और बिरबल जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग। ओके जी, बिरबल बघेल जी लिखते हैं शानदार एंड जानदार सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और सर्वेश भगत जी भी लिखते हैं कि ये गाना समझ रहे हैं ना, और ये फीडबैक भी सुनते हैं।
1: आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने मेरा दिल खुश किया, और सभी का शुक्रिया। MD फैज आलम हैदराबाद से।
0: ओके जी, अगला जो डिमांड है वो दो तीन दोस्तों का शायद मेरे ख्याल से है, और काजल झका जी लिखते हैं कि ये गाना सच में सुपर हिट है, और ये फीडबैक सुनते हैं।
2: अमन भैया गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से और जुड़ गया हूँ आपके प्रोग्राम से, और आज सबसे पहले सभी दोस्तों को, सभी आरजेस को और सभी मित्रों को मेरी तरफ से जन्माष्टमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी दोस्तों को।
0: ओके
2: धन्यवाद,
0: वेलकम जी आपका। और अगला जो डिमांड है वो हम

ये दत्ता करण जी, ओके, ये दोनों की एक ही है पसंद, यू ना देखो यानी तस्वीर बन के जी, बिल्कुल। तो एंजॉय कीजिए आप इस गाने को।

0: और बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आए हुए हैं। और यहाँ पे जन्नत जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरे गाने को प्ले किया और साथ में गुनगुनाया, और दोस्तों का भी धन्यवाद जिन्होंने गाने को पसंद किया और फीडबैक दिया। ओके जी, वेलकम है आपका भी। और कुंता भी लिखते हैं कि नंदलाल यादव जी की और MD फैज आलम जी दोनों की पसंद सुपर लाजवाब लगी है, और ये पसंद भी और ये फीडबैक।
1: अर्जे अमन सर जी, रवि मोहाले जी या दत्ता कदम जी, दोनों भाई मिलीजुली फरमाइश में शामिल किए, दोनों भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका। और आर्य सिंधु जी लिखते हैं कि अरे भाई अगला ही डिमांड आप लोग का आने वाला था, कोई बात नहीं। रवि मोहाले जी लिखते हैं कि एक लड़की मेरा नाम, सुपर लाजवाब अंशुला गाना सुनने को मिला, मजा आया है। और ईश्वर लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की डिमांड बहुत ही प्यारी है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। साथ ही साथ हमारे निशांत राय बोल लिखते हैं कि गाना बहुत ही अच्छा है। और दत्ता जी लिखते हैं कि मेरा अमन जी मेरा गाने को प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो डिमांड है वो हमारे दो दोस्तों की है, एक तो है हमारे आरिफ सिंधी जी, ओके आरिफ सिंधी जी के साथ साथ इसमें अरुण मंडल जी भी हैं, अरुण मंडल जी भी का भी इन्हीं यही गाना है, तो इंजॉय कीजिए। आप दोनों के पसंद पे मैं गाना सुनवा रहा हूँ, और फिल्म ये लाखों में हजारों में है मेरा महबूब, और चांद सितारों में है मेरा महबूब, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बनाते हैं और बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास है और गजन जी लिखते हैं कि दोस्त रवि मुखर्जी की पसंद बहुत अच्छी लग रही है, लाजवाब लग रही है, धन्यवाद देते हैं उनको। और रवि मुखर्जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया अमन सर जी हमारा गाना प्ले करने के लिए, सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और इसको लाल जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग चल रहा है और ये फीडबैक
1: अर्जय अमन सर जी अरुण मंडल जी आरिफ सिंधे जी दोनों भाई मिलीजुली फरमाइश में शामिल किए, दोनों भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं
0: आपका भी। और आरिफ सिंधे जी से बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और ये फीडबैक
2: एक लड़की मेरी नाम जुले ये गाना पहली बार सुने थे बट गाना बहुत ही मजा आया, इस सुन के बहुत अच्छा लगा
0: जी बिल्कुल। और यहाँ पे काजल झका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा था और निशांत राय बोले लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना था, धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ ये कुंता बिनी जी लिखते हैं कि ये डिमांड सुपर से भी ऊपर है, लाजवाब, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और ये फीडबैक सुनते हैं
3: लाखों में हजारों में है मेरा महबूब, चांद सितारों में है मेरा महबूब, लाखों में हजारों में है मेरा महबूब, चांद सितारों में है मेरा महबूब, उसकी ये चाल तौबा रंगे जमाल तौबा, उस पे ये हाल तौबा तौबा तौबा तौबा तौबा, लाखों में हजारों में है मेरा महबूब, चांद सितारों में है मेरा महबूब। अमन भैया नमस्कार, और ये अरुण मंडल जी की लाजवाब पसंद और एक भाई और दोनों की मिली जुली फरमाइश बे मिसाल, दोनों भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इतना
0: ओके जी। और नसीम खान जी लिखते हैं अमन सर जी बहुत से भाइयों के डबल डबल, अरे भाई डबल डबल किसी का नहीं होता, हर किसी की एक ही डिमांड यहाँ पे प्ले हो जाती है, ऐसा मत कीजिए कि डबल डबल में प्ले करूँ, नहीं नहीं नहीं हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग है ओके। आमना खान जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम असलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और अगला डिमांड है सुनील कुमार जी का।
4: अमन भैया गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से और जुड़ गया हूँ आपके प्रोग्राम से। आज के स्टार चॉइस में मेरी पसंद रहेगी फिल्म का नाम है हमारा खानदान और गाने के बोल हैं मैंने भी गीत लिखा है तेरी सूरत देखकर। इस गाने को पहले तो ये गाना आपको समर्पित है और आपकी सुंदरता की मूर्त को, और वंशिका जी हैं, आकांक्षा जी हैं, सोनी जी हैं, MS परमार जी हैं, रत्ना जी हैं, सोनू गौतम जी, प्रिंस पासवान जी हैं, मुक्तिनाथ जी हैं, सतीश शर्मा जी हैं, अरुण मंडल जी हैं और MD ताहिर जी हैं, और रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले सभी दोस्तों को मेरा ये गाना डेडिकेट है, धन्यवाद।
0: ओके जी, तो मैं सुनवा रहा हूँ मैंने भी एक गीत लिखा है तेरी सूरत देखकर, सच में एंजॉय कीजिए इस गाने को। और वो गीत है बहुत खूबसूरत हो तुम

0: बिल्कुल, मैंने भी एक गीत लिखा है तेरी सूरत देखकर विष्णु चंद्र जी लिखे की। हाँ, ये गाना बहुत ही प्यारा है। और कुछ उसके बाद यहाँ पे ये फिगर सुन रहे हैं।
1: अमन सर जी, आज 4 सितंबर 98 में गूगल की स्थापना हुई थी।
0: अच्छा,
1: तो आज उनका स्थापना दिन होने के कारण उनका शुक्रिया मानना जरूरी है, क्योंकि उनकी वजह से आज हॉटस्टार पर सभी लोगों का मनोरंजन हो रहा है।
0: अच्छा।
1: और आगे भी उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल उनकी मेहरबानी ऐसी ही बनी रहे।
0: जी, आगे भी होता
1: रहे।
0: धन्यवाद देते हैं आत्माराम जी। निशान साहब लिखते हैं बहुत ही प्यारा डिमांड है जी। और कुर्ता भी नहीं लिखते हैं, वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और इस पर लिखते हैं कि
2: वाह क्या खूबसूरत गाना है ये भी बहुत प्यारा लगा। और आपने मुझे सॉन्ग ऑफ द डे चुना, इसके लिए भी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: गाना
2: भेज दिए हैं, टाइम बचा तो चला दीजिएगा।
0: बिल्कुल,
2: बहुत बहुत शुक्रिया MD फैज आलम।
0: ओके, अगला जो डिमांड है वो गोविंदा खंडाते जी का है, तो सुनवाते हैं गोविंदा खंडाते जी, ये नूरानी चेहरे वाले, एंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दिया। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत मस्त दमदार धमाकेदार धमाकेदार गाना है जी, मजा आ गया। और ईश्वर राज जी लिखते हैं कि ये तो मस्ती भरा गाना है जी। और काजल झका जी लिखते हैं कि गाना तो बहुत ही प्यारा है जी। और ओके ओके ओके नो प्रॉब्लम। फिलहाल अगला जो डिमांड है यानी प्रियंका जी का, और प्रियंका जी सुनवाते हैं आपकी पसंद के चाबी खो जाए। बिल्कुल हम तुम्हें कमरे में बंद हो और चाबी।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आ चुके हैं। गोविंदा खंडादे जी लेते हैं, धन्यवाद अमस्तर जी गाना सुनवाने के लिए। ओके जी, और यहाँ पे काजल झक्का जी लिखते कि ये गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और कुंता बेन लिखते कि थैंक यू सो मच प्रियंका जी ब्यूटीफुल डिमांड के लिए। और ये फीडबैक
1: बॉबी मजी का गीत रुश कपूर और डिम्पल कपाड़िया पर फिल्माया गया। वाह वाह अमर सर जी, दिल की बात दिल ही जाने, साथ में आपका गुनगुनाना तो क्या कहना, बहुत बेहतरीन।
0: थैंक यू सो मच।
1: मैं आत्माराम पाटिल।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और यहाँ पे ये फीडबैक सुन लेते हैं, क्या कहते हैं प्रियंका जी। इनकी ऑडियो नहीं प्ले हो रही है क्यों भाई?
2: हम तुम सॉरी, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो,
0: क्या हो?
2: सोचो कभी ऐसा हो तो क्या
0: हो,

0: थैंक यू हमारा सॉन्ग सुनाने के लिए अमर जी, थैंक यू वेरी मच,
1: वेलकम। और इस गाने का यानी जवाब लेकर आई है दीक्षा जी, मैं पहले करूंगा अभी, लेकिन फीडबैक है राहुल पासी चिलते कि हम तो मैं कमरे में बंद और चाबी खो जाए, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। थैंक यू प्रियंका जी इस गाने को सुनाने के लिए, फीडबैक।
2: ये भी गाना सुपर है, फिल्म बॉबी का, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, बहुत मजेदार गाना, बहुत बहुत धन्यवाद अंडी साहब आलम।
1: ओके जी, और निशांत अहबर लिखते हैं कि मेरा ये फेवरेट गाना है, और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि हम तुम्हें कमरे में बंद हो चाबी खो जाए, गाना बहुत ही प्यारा लगा है, और ये फीडबैक से लेते हैं।
3: हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलैया में बॉबी खो जाए, बहुत ही प्यारा गाना। और अगर कमरे का चाबी गुम हो जाए तो घबराना नहीं है, तुरंत मोबाइल निकालना है, अब तो मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल निकालना है और रेडियो हॉट स्टार उसमें ट्यून करना है, बस सुनते जाना है जो दीवाना बना दे।
1: धन्यवाद देते हैं आपको भी, और मीना जी लिखते हैं बहुत ही लाजवाब गाना है। ओके, अगला जो यानी कि दीक्षा जी की है कि मैं रहूँ तुम रहो दूसरा कोई नहीं, बिल्कुल जब हम लोग कमरे में बंद रहेंगे तो क्या होगा, वही होगा।

लो फीडबैक भी मेरे पास आया हुआ है, लेकिन फीडबैक में शामिल करूंगा इस गाने के बाद, क्योंकि अनिल कश्यप जी का मैं पहले गाना प्ले करता हूं, इसके बाद मैं अगला गाना प्ले करूंगा और ये अपनी भी जिंदगी में खुशियों का रंग आएगा ढूंढेंगे तो

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे दीवाना बना दे दीवाना बना दे। ईश्वरलाल जी लिखते हैं, झक्कास सॉन्ग है। और ये क्या कहते हैं, ये प्रियंका जी सुनते हैं। प्रियंका जी,
1: अमन जी, हमने अभी सॉन्ग गाया था कि अंदर से कोई बाहर ना आ सके और बाहर से कोई अंदर ना जा सके, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। और इसका जो जवाब आया कि मैं रहूं तुम रहो दूसरा ना कोई और रहे, तो जब दरवाजा बंद ही हो गया है, चाबी भी घूम गई है, तो उस रूम में तो दो ही जने रहेंगे ना। बाकी ये सॉन्ग भी बहुत अच्छा था, थैंक यू।
0: वही तो कह रहा हूँ कि हम रहे तुम रहो दूसरा कोई हो रहा ही नहीं, इसलिए ना। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं, ये गाना भी मस्त लगा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और मीना कुमार जी लिखते हैं कि नसीब अपना अपना गाना मुझे अच्छा लगा है। और ये फीडबैक,
2: थैंक यू भैया मेरा गाना प्ले करने के लिए।
0: और भी कुछ कहते हैं,
2: मैं रहूं तुम रहो दूसरा कोई ना रहे, ये गाना तो मैंने पहली बार सुना है, बट गाना बहुत ही मन को रोमांचित करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद प्ले करने के लिए, और जिनका फरमाइश था उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके जी, और निशाद है वो लिखते हैं, वाह क्या प्यारा गाना है, सच में मजा आया है। और कुंता भी लिखते हैं कि दोनों डिमांड बहुत ही प्यारे लगे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और राधा कृष्ण गोपी जुड़ चुके हैं, बहुत देर जुड़ गए भाई, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, लेकिन वेलकम है आपका भी, और आधे घंटे के लिए ही सही। फिलहाल आत्माराम जी लिखते हैं कि आज के प्रोग्राम की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, सभी की पसंद भी बेहतरीन। और बीरबल बघेल जी लिखते हैं कि गाना यानी सीख देने वाला है और समझने वाला है, बिल्कुल सही कहा अपना। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे शाहिद अंसारी जी का है, शाहिद अंसारी जी सुनना चाहते हैं खींच लाया है मेरा प्यार, इंजॉय कीजिए।

बिल्कुल खींच लाया है तेरा प्यार, चलाया है राहुल पाचन जी जिंदगी अपनी भी जिंदगी में खुशियों का ये पल आएगा। गाना मुझे अच्छा लगा है, उनको धन्यवाद देते हैं। और विष्णु चंद्र जी जितेंगे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। और रवि महाराज जी जितेंगे अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, गाना बहुत ही प्यारा था। और बीरबल बघेल जी जितेंगे ये गाना शानदार है, दमदार है। और राधा कृष्ण को भी देखेंगे बहुत लाजवाब डिमांड है, और धन्यवाद देते हैं इस डिमांड के लिए। इस पर बेहतरीन पसंद, लाजवाब पसंद है। अगला जो डिमांड है वो नीतू शरण जी का है, नीतू शरण जी लिखते हैं ये गाना, तो एंजॉय कीजिए इस गाने के लिए। एंजॉय कीजिए नीतू शरण जी।

एक गाना के बाद में यानी कि आपको कॉल लगाऊंगा, लेकिन फिलहाल फीडबैक शामिल करता हूं। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी कहते हैं, अमन जी ऐड चला दीजिए कि नए श्रोताओं को समझ में आएगा कल क्या है। तो कल बता दूंगा, कल अंतरा मस्ती है मेरे प्रोग्राम का, और यानी कि 11 बजे आएंगी आरजे यूनिवर्सिका जी, उनका प्रोग्राम आएगा, और उसके बाद यानी कि करीब यानी कि 1:30 बजे प्रोग्राम होगा भोजपुरिया मस्ती यानी भोजपुरिया धमाल, वो आरजे सोनी जी करती हैं, तो ज़रूर सुने प्लीज़। उसमें सिर्फ भोजपुरी गाने शामिल होते हैं, और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि दोनों गाने बहुत

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। फीडबैक आ चुका है, शामिल करता हूँ।
1: ये गाना भी बहुत खूबसूरत लगा, अच्छा महसूस हुआ दिल को। और आपका भी बायोपिक यूट्यूब पर अभी देखे, वो भी शानदार है। आपके जर्नी के बारे में आपने बताया है तो अच्छा लगा जान के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया एमडी फैज आलम।
0: थैंक यू सो मच। दीपक कुमार गायकवाड़ जी कहते हैं कि अमन जी जन्माष्टमी पर अच्छा जी मैं क्या कहूँ, अभी तो कुछ नहीं कह सकता। और बिलबर भगे लिखते हैं कि बेहद ही नगमा है जी, अभी आपको कॉल लगाने वाला हूँ मैं। ये फीडबैक
2: नाइस सॉन्ग अमन जी, बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, क्योंकि इसमें बार बार प्रिया नाम आ रहा था और मेरा निकनेम प्रिया है।
0: अच्छा,
2: तो
0: ओह माय गॉड,
2: इतना प्यारा सॉन्ग सुनाने के लिए
0: मुझे तो ये भी पता ही नहीं था। और निशांत है बोले लिखते हैं कि मेरा फेवरेट गाना है, ओके जी। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ओ प्रिया वाला गाना मुझे बहुत ही पसंद आया। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत ही पसंद आया। फिलहाल कॉल लगाते हैं बीरबल बघेल जी को।
3: अमन सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं?
3: मैं एकदम बिंदास हूं और आपके माध्यम से पेश किए जा रहे प्रोग्राम का लुत्फ उठा रहा हूं। और आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो
0: जी।
3: मैं बता दूं सभी को मेरी ओर से, यानी आपके रेडियो श्रोता बीरबल बघेल की ओर से बहुत बहुत बधाइयां।
0: थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत बधाइयां।
3: और जैसा कि मैंने बताया था, आज मेरा जन्मदिन है तिथि अनुसार, लेकिन डेट के हिसाब से 13 सितंबर को मनाते हैं।
0: अच्छा।
3: तो दोस्तों में नहीं बताते हैं, घर में ही मना लेते हैं आज के दिन।
0: अच्छी बात है, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। तो आज ये बताइए कि आपके लिए मैं, मतलब आज आप क्या सुनना पसंद करेंगे?
3: सुनना पसंद करूंगा मैं, अभी मैंने एक सॉन्ग जो है निकाला था मैंने, कि
0: बताइए। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी।
3: हेलो सर, आवाज नहीं आ रही क्या?
0: जी, अभी आवाज आ रही जी, बोलिए।
3: हाँ, बिल्कुल। एक गाना है, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। जी, ये सॉन्ग,
0: बिल्कुल
3: ये सॉन्ग मैं लेकर आया हूँ अपने रेडियो हॉट स्टार परिवार और इस वक्त सभी श्रोता भाई बहन जो सुन रहे हैं उन सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ।
0: तो क्या मैं गाना सुनवा दूँ?
3: बिल्कुल सर, आप गाना सुनवा दीजिए और सभी को इंतजार है। तो मैं तो कहूँगा कि मुझे बहुत खुशी हुई और प्रसन्नता हुई आपने मुझे कॉल किया, बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
0: और आपको ये भी बता दीजिए कि आपको कॉल किस माध्यम से किया गया है।
3: हाँ जी बिल्कुल, दिन में भी मेरे को कॉल आया था आदरणीय वंशिका जी की ओर से, तो उस समय मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन अब मैं समझ गया तो अपडेट रहा हूँ। ये कॉल जो है हमारे रेडियो हॉटस्टार ऐप के माध्यम से आया है, बहुत अच्छा लगा सर। पहले व्हाट्सएप के माध्यम से आता था, लेकिन आज कुछ नया मुझे देखने को मिला, सुनने को मिला और एकदम अपडेट मिला, तो मैं और गदगद हूँ और सभी से कहूंगा कि अपने रेडियो हॉटस्टार ऐप को अपडेट करते रहिए।
0: धन्यवाद, चलिए सुनवाते हैं, आपके पसंद आएगी ये गाना, एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना।
3: थैंक यू सो मच आदरणीय।

0: फिलहाल फीडबैक शामिल करेंगे और क्या करेंगे। यहाँ पे मीना जी लिखते हैं, वाह बहुत ही दिल खुश करने वाला गाना है, मजा आ गया है। और ये फीडबैक
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा बोनस गाना बजाने के लिए, मेरी खुश हो गया एकदम, बाग बाग बहुत बड़ा वाला, तो एक बार फिर से दिल से शुक्रिया MD Faiz Alam।
0: ओके जी, और यहाँ पे बिरबल बघेल जी लिखते हैं कि आदरणीय अमन जी मैं और इन्हें गदगद हूँ और धन्यवाद और इन पूरे परिवार की तरफ से या भाई बहनों की तरफ से इसने मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो डिमांड है दो दोस्तों की, बागेश्वर निषाद जी हैं और बागेश्वर निषाद जी के साथ साथ एक साहब और हैं यानी कि राजेश कुमार जी, तो दोनों की एक ही डिमांड है, आजकल कुछ याद रहता नहीं ऐसा कुछ गाना है, तो एंजॉय कीजिए, सुनवाते हैं इस गाने को।

0: वेलकम एक और फिर देख अच्छी तरह कुंता जी देखते हैं बहुत ही बहुत खूबसूरत डिमांड है। थैंक यू सो मच ये बिल्कुल बचल जी और ये फिर देख
1: मैं दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे क्या हम करेंगे। थैंक यू बहुत ही प्यारा सॉन्ग था।
0: वेलकम जी आपका भी और बीरबल बगल लिखते हैं वाह क्या खूबसूरत नगमा है मजा आ गया सुन के। राहुल पासी से लिखते हैं कि तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे गाना बहुत ही प्यारा था और निशांत राय वो लिखते हैं वेरी नाइस सॉन्ग। अगला जो डिमांड है वो संदीप सुतार जी का है तो भाई मतलब संदीप सुतार जी एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: बिल्कुल मुझे मत रोको, मुझे गाने दो। वैसे फिर है मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: अमन जी, ऋषि कपूर जी का एक सॉन्ग है जो मैं सुनाना चाहती हूँ। तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या, एक दूजे बिन हम अकेले, आँखों के रस्ते तू हंसते हंसते दिल में समाने लगा है। ये सॉन्ग भी बहुत ही प्यारा है उनका। थैंक यू,
0: वेलकम जी। और यहाँ पे बागेश्वर निशा जी लिखेंगे वेरी वेरी थैंक यू अमन जी गाना प्ले करने के लिए। राहुल पाची जी लिखते हैं नाइस सॉन्ग है और बिरबल बघेल लिखते हैं कि गाना ये भी बहुत ही प्यारा है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो अनिशा सिंधी जी का है। अनिशा सिंधी जी सुनना चाहती है चल चल मेरे भाई तेरे।

0: को थैंक यू सो मच। राहुल पासी लिखते हैं चांदनी का भी गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है और बीरबल बघेल लिखते हैं शानदार गाना है और ये फिर दोस्तों लिखते हैं क्या कहती हैं।
1: अमन जी ये सॉन्ग बहुत ही अच्छा था जो कि आपके ऊपर ही था क्योंकि आपकी सुंदरता की मूरत परी जी आपके सपनों की रानी वैसी ही होंगी जैसा कि ऋषि कपूर और विनोद खन्ना जी ने बताया। थैंक यू इतना प्यारा सॉन्ग सुनाने के लिए।
0: ओके जी और इसी बात पर अगला जो डिमांड है मतलब ऐसा तो डिमांड बहुत सारी है लेकिन एक गाना मैं अपने तरफ से प्ले करके जाऊंगा फिलहाल यानी कि मैं सिया जी के पसंद को सुना रहा हूँ और सिया जी गाने को 57 वर्ष। ओके मैं देखता हूँ ये गाना शायद मेरे पास डाउनलोड हो गया हो।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

और बोलो साथ में अपनी भी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं करवा।

0: ये हम तुम चोरी से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।